0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
2: ਹਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd. Chandini.

0: 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच जरा हौली

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
3: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
4: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
5: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
6: ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच। जरा हौली।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई.
2: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है.
3: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: यार तू इतनी इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: This station is now the ultimate power in the universe.
6: Radio Haji 1674.

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी।
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो
3: ससिकाल शुभ बोए बादशाह ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो हां जी yeah.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो।

0: सकता,
1: ब्रेक नहीं कर सकती,
0: गाने हिटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम, ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई.
3: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रैजिक होती है.
4: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil coming to cinemas on May 22nd. Chand.

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM कीप लिसनिंग

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil coming to cinemas on May 22nd. Chand.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
3: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: तेनू ओदे नाल मिलाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी।
1: हाँ जी, 1600

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
3: रेडियो हांजी 16748।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
1: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil coming to cinemas on May 22nd. Chand.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हां जी हां जी
1: रेडियो हां जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। यू आर लिसनिंग।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाँ जी, 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

हाँ जी, तुसी सुन रहे सी पाश पाश दी जिंदगी ते उसियां रचनावां बारे। आस करदी हां कि तुहानू अज दा शो पसंद आया होएगा, क्योंकि कवि कदे मरदे नहीं, ओ लोकां दी याद विच वस जांदे नहीं।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हां जी 1674 AM।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1604

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सदाखर कीने राम नाम एक अखर
1: जिनकै जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभु सिमरत काछ बिघन लागै प्रभु कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभु कै सिमरन सार कै संग सर्व निधान नानक हर अंग
1: प्रभु कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला
1: सि सिमरै जिने आप सिमराय नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभु कै सिमरन तिसना बुझै प्रभु कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभु कै सिमरन नाहि जम तरसा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभु कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरै सी धनवंते प्रभु को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभु को सिमरै सी जन परवान प्रभु को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभु को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभु को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरै सी सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरै सी पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते आनंद न जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभु कै सिमरन कारज पूरै प्रभु कै सिमरन कभु न जूरै
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन कृपा मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लागे बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आपने अनकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि
1: या मात पिता सुतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कूट पापर हरै
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै
0: अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: जे मार्ग हो जात कीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याइयै नानक गुरमुख परमगत पाइयै
1: सूटत नाही को लख बाही नाम जपै तै पार पराही
0: अनक बगंजह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन्मै मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हौ मैला मल कब हो ना धोवै हर का नाम कूट पाप खोवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइयै साधकै संग
0: जे मार्ग के गन जाहे न पूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पैंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तो प्रोगाम ते हर के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ कर खै तह नानक हर हर अमृत बरख है
1: भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कत सन दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मंत्र रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरद विवेक है।

0: धार है।
1: निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहे समानी।
0: दुख रोग बिन से बै परम, साध नाम निर्मलता के करम।
1: सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी। सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, पत जना कै मन विश्राम। 8:24 श्लोक।

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

गुरु की संगत आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कार योग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवण करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए।

नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। परमात्मा को आखिर हमने तलाश लिया, हमने ये जाना कि जिस तरह से मैं एक आत्मा, एक लाइट का एक पॉइंट हूं, उसी तरह से वो परमपिता भी एक लाइट, एक पावर हाउस है। मुझे अपना ही स्वरूप या मैं उसी का ही स्वरूप हूं, लेकिन मैं पुत्र, वो पिता है। आगे और जानते हैं, याद होगा कि पिछली कड़ी पे हमने छोड़ा था कि कहां है वो, कहां रहता है वो परमपिता। तो आइए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं।

0: हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: कहाँ हैं वो? हमने मिल तो लिए, हम मिल लिए उनसे, ये भी जान लिया कि वो कौन है, पहचानने की कोशिश की, पर वो रहते कहाँ है, कहाँ ढूंढे?
1: जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो स्वाभाविक रीति से नजर कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ, है ना? बस अभी, कभी कहेंगे बस अभी थक गया, बस अभी
0: कहाँ हो तुम?
1: वेयर आर यू नाउ? यू शुड थिंक दैट क्यों हमारी नजर ऊपर जाती है? हमें कोई कुछ भी नहीं पता कि ऊपर क्या है, ना हमें किसी ने बताया कि ऊपर कुछ है, लेकिन स्वाभाविक, दिस इज वाई वी से कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द सोल, तो स्वाभाविक रीति से नजर ऊपर जाती है, क्योंकि वही वो घर है जहां से हम आए हैं।
0: कहीं मेरी याद में रचा बसा है।
1: हाँ, क्योंकि हम उस घर से आए ना। सो अ मेमोरी इज देयर। अब किसी के अंदर वो मेमोरी क्लियर होगी और किसी के अंदर वो बिल्कुल फेंट है, लेकिन एक बार हम वहां से आए हैं तो उसकी मेमोरी
0: हमारे साथ है,
1: एब्सोल्युटली इनग्रेन है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला ही अब सब देखेगा, उसी को मतलब ऑटोमेटिकली नजर उसकी तरफ जाती है। तो जैसे ये जो दुनिया है जिसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज आवर फिजिकल वर्ल्ड, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ मैटर, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ साइंसेस, इट इज अ वर्ल्ड टाइम एंड स्पेस, यू नो ये लिमिटेड है, एवरीथिंग इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आवाज है, जहां मूवमेंट है, हलचल है, जहां रिलेशनशिप्स है, जहां नॉइज है, ये सब कुछ है, वो ये दुनिया है जिसको हम स्थूल वतन कहते हैं, कॉर्पोरियल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड, जहां हम कॉर्प्स में है,
0: ह्यूमन बींग्स
1: है। हाँ, हम बींग है लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में है, तो हम कॉर्पोरियल वर्ल्ड या स्थूल वतन में है। लेकिन इस शरीर को लेने से पहले भी तो हम कहीं थे ना, यहां आकर हमने शरीर धारण किया, लेकिन इस शरीर को लेने से पहले हम कहां थे? तो परमात्मा आकर ही हमें उस घर का परिचय देते हैं, जैसे हमें अपना दिया, फिर अपना दिया परमात्मा ने, फिर उस घर का भी दिया कि इस दुनिया से पार, चांद सितारों की भी दुनिया से पार, बियॉन्ड ऑल दिस स्पेस दैट वी कैन सी, देयर इज अनदर वर्ल्ड, अ वर्ल्ड इन द सेंस इट इज जस्ट अ रीजन, एक्चुअली यू कैन नॉट कॉल इट, इट्स अ वर्ल्ड बट इट्स बेसिकली अ रीजन, इट इज एन एरिया विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जहां सिर्फ प्रकाश है, इट्स जस्ट रेड लाइट, जस्ट गोल्डन रेड लाइट, एंड दैट इज द लैंड,
0: That is where we have,
1: yes, absolutely.
0: Okay.
1: And that is the land where we all stayed, जहां परमात्मा भी निवास करते हैं और जहां हर आत्मा भी निवास करती थी इस सृष्टि पर आने से पहले। It is a land of complete silence, absolute stillness, स्थिरता। क्यों स्थिरता नहीं? क्योंकि वहां कोई संकल्प नहीं चलेगा,
0: कोई thought नहीं,
1: ये noise तो नहीं होगी
0: क्योंकि बॉडी नहीं,
1: ये तो बॉडी नहीं है, लेकिन जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं या हम अकेले भी हैं, भले हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नॉइज अंदर चलती है, थॉट्स, लेकिन वो जो धाम है जिसको हम परम धाम कहते हैं, क्योंकि वो परम ऊंचे से ऊंचा धाम है, वो परमात्मा का रहने का भी धाम है, तो परम धाम कहते हैं, वहां कोई आवाज नहीं, संकल्पों की भी आवाज नहीं, इट्स अ थॉटलेस स्टेज, जहां आत्मा इज नॉट डूइंग एनीथिंग,
0: इट्स जस्ट देयर,
1: अ बीइंग, जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन प्लस बीइंग, यहां आकर हम ह्यूमन डूइंग हो जाते हैं, आई एम डूइंग दिस, व्हाट एम आई बीइंग, देयर आई एम इन दैट जस्ट कॉन्शियंट बीइंग, आई एम जस्ट एब्सोल्युटली स्टिल, एक लाइट के अंदर, एक लाइट सस्पेंडेड है, जैसे यू कैन सी इट्स लाइक स्टार, ये हम देख रहे हैं ना, इतने सारे स्टार्स, इट्स अ रीजन लाइक वास्ट एक्सपांस, नो टाइम नो स्पेस, एंड उसमें ये स्टार्स सस्पेंडेड है, अपने अपने टाइम पे फिर
0: नीचे उतरते
1: हैं, इस सृष्टि पर आते हैं। तो मैं आत्मा उस एब्सोल्यूट स्टिलनेस और एब्सोल्यूट साइलेंस, और इसीलिए हर आत्मा उस शांति को तलाशती है, और जब भी अशांत होते हैं तो हमें वो घर बहुत याद आता है, क्योंकि उस घर में कोई थॉट नहीं था, तो बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल साइलेंस, एंड वहां परमात्मा भी रहता है, वो भी एक ज्योति बिंदु, एंड मैं आत्मा भी एक ज्योति बिंदु, तो उसको हम सोल वर्ल्ड कहते हैं, ये है फिजिकल वर्ल्ड और वो है सोल वर्ल्ड, आत्माओं का रहने का स्थान। अलग अलग नाम से उसको याद किया गया है, परम धाम, शांति धाम क्योंकि वहां शांति है, मुक्ति धाम क्योंकि हम इस शरीर के कर्म बंधन से मुक्त हैं, निर्वाण धाम वाणी से परे हैं। तो इन सब अलग अलग नामों से उसको याद किया गया है, वो उस परमात्मा का रहने का स्थान है और हम आत्माएं भी वहीं रहती हैं। अब आप देखो जब हम वहां थे तो ये स्मृति हमारे अंदर थी, परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी वैसी, ये मेरा घर, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्डेड है।
0: तो हर बार व्हेन आई टेक अनदर बॉडी, यू नो व्हेन आई मूव आउट फ्रॉम दिस बॉडी एंड टेक अनदर बॉडी, आई इन बिटवीन गो देयर?
1: नहीं, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन हम बीच में घर नहीं जाते हैं। इट्स लाइक वो घर है और ये हमारा कर्म क्षेत्र है, वर्ल्ड स्टेज, वहां से हम आए हैं कर्म करने के लिए और काफी समय तक हम इस सृष्टि पर रहकर ही इस कर्म क्षेत्र में पाथ प्ले करते हैं। फिर एक समय आता है जब हम थोड़ी देर के लिए फिर से घर जाते हैं और फिर वापस आकर वो सृष्टि रंगमंच वापस स्टार्ट होता है।
0: बिकॉज वी हैव कम फॉर अ पर्पस।
1: या दिस इज लाइक आवर वर्क, दिस इज आवर वर्क प्लेस, वो हमारा घर है। तो एक बार आप घर से ऑफिस आते हो तो 8-10 घंटे के लिए आते हो ना। आप ये नहीं करोगे कि हर एक घंटे के बाद घर जाना है बीच में। तो आप 8-10 घंटे के लिए आते हो, शाम को 8 बजे के करीब आप थोड़ी देर के लिए घर जाते हो सिर्फ रेस्ट करने के लिए। लेकिन वो घर जाने से आप रिफ्रेश होके, रेस्ट होके, रिचार्ज होके वापस नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हो। तो सेम थिंग, ये हमारा वर्क एरिया है, वो हमारा घर है। थोड़ी देर के लिए जाएंगे रेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर ज्यादा समय इस वर्क प्लेस पे बिताते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कर्म करते करते करते हम बहुत थक गए हैं, तो अगर बीच बीच में हम कुछ क्षण निकाल के सिर्फ मन से, बुद्धि से, आत्मा निकल कर नहीं जाएगी, लेकिन मन और बुद्धि से जब उस घर में चले जाते हैं ना और उस पिता के पास चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ बैठे बैठे भी हम वो रिफ्रेशमेंट अनुभव कर सकते हैं। जैसे अब आप बैठो और 2 मिनट के लिए अपने घर को याद करो, जस्ट गो होम फ्रॉम हियर, गो होम एंड बी विद योर फैमिली, यू विल एक्चुअली फील कि आप जाकर वो एक्सपीरियंस करके वापस आ गए। सो इट विल गिव यू दैट फीलिंग
0: हैप्पीनेस, यू नो,
1: दैट्स
0: कंफर्ट लेवल,
1: दैट कंफर्ट, क्योंकि घर मतलब कंफर्ट, घर मतलब प्रोटेक्शन, घर मतलब वो पिता की सिक्योरिटी, तो वो घर मतलब वो प्योरिटी। तो इसलिए हम मेडिटेशन मतलब वो घर जाना, उस पिता के मिलना, उससे बातें करना, फिर वापस आ जाना। कैसे करना? बुद्धि से, वो फिर हम मेडिटेशन में सीखेंगे। तो ये है कि परम धाम कहाँ हम पिता को याद करें, क्योंकि जब तक हमें उसका घर नहीं पता होगा तब भी याद करना बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ पे है, कहाँ हम उससे मिलने जाए। तो हमने परमात्मा का रूप देखा, उसका नाम देखा कि हम उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, फिर उसका घर देखा, लैंग्वेज हम किस भाषा में उससे कम्युनिकेट करें, थॉट्स, संकल्पों के आधार से कम्युनिकेट करते हैं, और संबंध हमारा उसके साथ, जो संबंध बनाना चाहे वो बना सकते हैं, वो भी हम मेडिटेशन में देखेंगे। हम परमात्मा के साथ कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं।
0: एक्चुअली यू नो वी कैन, माय गॉड, इफ वी हैव हिम, सी लाइक कितनी राइटर्स ने कितनी बार ये कहेगी कि अगर मुझे भगवान मिल जाए, अगर मुझे खुदा मिल जाए तो मैं ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा। सो नाउ लाइक
1: एब्सोल्युटली, और उसके गुणों को तो हम जानते हैं, तो किसी को भी याद करना होता है तो क्या क्या चाहिए? उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण, उसका कर्तव्य। आपने कहा था ना एक्ट ऑफ गॉड, कि हम सब यहाँ कर्म क्षेत्र पे हैं, तो उसका रोल क्या है, वो क्या कर रहा है? तो वो अपने परम धाम में बैठा है, वो अपने घर में बैठा है। पूरे हमारे इस ड्रामा के दौरान वो हमारे ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता है। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप 5th फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, आपके बच्चे ने ऊपर से नीचे झांक कर देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं, तो कहते हैं मुझे भी नीचे खेलने जाना है। आप कहते हो नीचे देख लेना, मतलब चोट लगेगी, दर्द होगा, नहीं मुझे नीचे खेलने जाना है, तो आप उसको भेज देते हो। 2-3 घंटा वो बहुत अच्छी तरह से खेलता है, लेकिन फिर उसको थक जाता है, चोट लगने लगती है, चीटिंग भी बहुत होती है, नीचे रोने भी वो लगता है। अब ये सब थोड़ी देर तो चलता रहता है, जब वो बहुत अति में पहुंच जाता है, रोने के, कष्ट के,
0: तब आप पहुंच जाओ,
1: तब वो एक बार आपकी तरफ देखता है ऊपर सिर्फ, और सिर्फ एक बार बोलता है कि प्लीज मुझे आके यहाँ से ले जाओ। आप दौड़ते हुए नीचे जाएंगे, उसको उठाएंगे और ऊपर ले आएंगे, उसको हील करेंगे, सफाई करेंगे, चुप कराएंगे, सब कुछ करेंगे। नेक्स्ट डे
0: ही डू द सेम,
1: नेक्स्ट डे अगेन ही विल से कि आई वांट टू गो होम। सो दैट इज नो शिव बाबाज रोल इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। वो हम नीचे आ जाते हैं खेलने के लिए, कुछ समय हम बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, इट्स अ गुड गेम, बहुत मजा आता है सारा कुछ करते हुए, लेकिन बहुत समय हो गया ना करते करते, तो बीच में से दुख अशांति ये शुरू हो गई थी, चीटिंग भी शुरू हो गई, एक दूसरे के साथ रोना भी आया, हम बीच बीच में उसकी तरफ देखते भी गए, उसने कहा खेल ले थोड़ी देर और, लेकिन जब हमारी जो दुख थे वो बहुत अति में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल हम जैसे कि बहुत जोर से चिल्ला पड़ते हैं कि बस अब हमारे से और सहन नहीं होगा, अब हमें बस मुक्ति चाहिए इससे। दैट इज द टाइम व्हेन ही हैज टू कम डाउन, और वो उस समय पर आ जाता है, नीचे आता है, एक एक बच्चे को फिर उठाता है, उसके सारे जो घाव है ना उस पे मरहम लगाता है।
0: आई थिंक नाउ द टाइम हैज कम, एक्चुअली आई फील लाइक क्राइंग, यू नो, बिकॉज़ टाइम नाउ,
1: यस इट इज दैट टाइम, इट ही शुड नॉट कम, ही हैज ऑलरेडी कम, परमात्मा आ चुका है, वही तो ये कार्य कर रहा है, वही तो हमें बता रहा है। मेडिटेशन है क्या, उसको याद करते हैं प्यार से, वो हमारे एक एक घाव को भर देता है, एक एक चोट को हटा देता है, फिर हमें फिर ठीक करके घर ले जाएगा, और फिर थोड़े दिन के बाद हम कहेंगे हमें फिर नीचे आना है। तो कई लोग जैसे कहते हैं ना बस मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, वी डोंट वॉन्ट टू कम इन टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बट इट डजेंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि द नेचर ऑफ द सोल इज कर्म, यू नो, हम घर जाएंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए, उसके बाद क्योंकि जस्ट इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग ना, इट्स अ लिटिल बोरिंग एक्चुअली,
0: स्टिल है ना?
1: Yes, still है। हाँ. तो वो उसके जो सारी क्वालिटीज वो उसको यूज नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो वो सिर्फ जब हम बॉडी में आते हैं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं तो देर इज नो एक्सप्रेशन, देर इज नो एक्सपीरियंस, ना हम अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना हम कुछ अनुभव कर सकते हैं, वी जस्ट स्टिल। लेकिन शिव बाबा में और हमारे में क्या अंतर है कि हम शरीर लेते हैं, शरीर लेने से धीरे धीरे धीरे धीरे हम अपनी अवेयरनेस को ही खो गए कि मैं कौन हूँ, जो हमने कहा ईगो आ गई, क्योंकि वी फॉरगॉट कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो शरीर नहीं लिया, तो वो उस शरीर से, उस साकारी दुनिया से न्यारा है, तो उसको कभी वो अपना ओरिजिनल स्वरूप भूला नहीं, और इसलिए उसकी क्वालिटीज में कभी
0: डिप्लीशन नहीं हुआ, कोई कमी नहीं,
1: और हमारे उसमें हो गई क्योंकि हमने शरीर लिया, हम उसकी अवेयरनेस भूल गए अपने, और फिर हम वर्च्यूज की बजाय वाइसेस की तरफ, विकारों की तरफ।
0: नो बट एक्चुअली दैट एस्पेक्ट इज सो गुड, यू नो दैट वी रियली नीड, वी आर ऑल क्राइंग, वी नीड हीलिंग,
1: एब्सोल्युटली। तो परमात्मा उसी टाइम पर आता है जब हम सब की कलेक्टिव आवाज इतनी ऊंची हो जाती है, हमारे दुख इतने बढ़ जाते हैं, त्राही त्राही मच जाती है, और सच में इस समय त्राही त्राही मची है कि पिता अब बच्चों का दुख नहीं और नहीं देख सकता, तो वही ड्रामा के अनुसार उसका भी रोल है नीचे आने का, क्या करना है, ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों को वापस रिस्टोर कर देना है अपनी पीस और प्योरिटी की तरफ, और उसमें क्या करना है, उसको कोई मिरेकल नहीं करना है, लोग कहते भगवान आया तो फिर कोई मिरेकल हो जाए, सारी दुनिया परिवर्तन हो जाए। इफ वी लुक एट द वर्ल्ड ऑन अ ग्लोबल लेवल, व्हाट एवर द केओस इज देयर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द केओस इन द
0: माइंड,
1: इन द सोल। अगर सोल रिस्टोर हो जाए तो वर्ल्ड अपने आप रिस्टोर हो जाएगा, तो गॉड्स रोल is to restore that peace and harmony in the world. कि ये जो सारा chaos हो गया है इसको वापस harmony में लाना है, लेकिन उसके लिए वो करता क्या है, आत्मा की, he restores the peace and purity of the soul. जब soul अपनी original state में आ जाएगी, प्रकृति अपने आप ठीक हो जाएगी,
0: balance
1: अपने आप balance. So that's his role. He comes at this time, heals us, restores us back to that charged battery, nature automatically takes its course.
0: But he said he takes us back also.
1: Yeah, he takes us back, absolutely, because little rest, na? He takes us back home, we rest for a little time, then come back.
0: So, but who goes? Like, whoever is in the dire need, actually, he can't take all of us, you know?
1: Yes.
0: You know, like, how does, actually, it's, you know, इफ यू लुक एट इट यू नो राइट
1: नाउ हर एक बच्चा है हर आत्मा उसका बच्चा है भले उसे पहचाने या नहीं पहचाने लेकिन हर आत्मा इस टाइम जो सृष्टि पर है वो उस परमात्मा शिव बाबा का बच्चा है तो उसके लिए तो सभी का दुख एक बराबर है लेकिन वो ये चाहता है कि हर आत्मा पहचान ले और अपने दुखों से मुक्त हो जाए और वो ही ये प्रयास चला है जो हम हमेशा कहते हैं कि इतने सारे सेंटर्स 130 कंट्रीज 8500 सेंटर्स ये सब सेंटर्स खोलने की क्या आवश्यकता है दिल्ली शहर में आज हम हैं 150 सेवा केंद्र है क्यों ताकि विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स ऑफ वेयर यू आर स्टेइंग यू गेट दैट हीलिंग आप सेंटर पे आते हैं आपको शिव बाबा का परिचय मिलता है अपना मिलता है एंड योर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स एंड यू आर रेडी नॉट अबाउट टेकिंग द जर्नी होम लेकिन व्हाट अबाउट माय लाइफ नाउ वो तो बाद में जो होना है वो अलग लेकिन अभी की जीवन क्या वो जीवन बहुत सुंदर बन जाती है
0: आई कैन रियली अंडरस्टैंड यू नो लाइक इट्स अगर हम शिव बाबा की बात करें उस परिचय की बात करें उस एहसास की बात करें आई कैन फील इट यू नो बट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू एक मैं सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के इस वक्त में सुख खुशी प्यार नहीं मिल रहा है हम त्राही त्राही कर रहे हैं हम मंदिरों में जा रहे हैं वहां नहीं कुछ समझ में आ रहा फिर हम उन रिचुअल्स में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं वो इतना कंफ्यूजन उनसे कैसे बाहर निकल सकते इन द रियल
1: मतलब एक है कि जो लोग समझ के कर रहे हैं यू नो पूरी अंडरस्टैंडिंग से पूरे फेथ के साथ लेकिन एक है जो सिर्फ डर के मारे कर रहे हैं यू नो कि मेरी नौकरी लग जाए तो उसके लिए ये इतने दिन उपवास मेरी ये हो जाए तो उसके लिए ये पहनना है उसके लिए ये हवन करना है भाई आपका समय ठीक नहीं चल रहा है आप इतना दान कर दो तो ये सारा फियर है ये तो जैसे ज्ञान नहीं है तो हमें भय में यू नो अब हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब सिर्फ कुछ करने से थोड़ी कष्ट दूर हो जाएगा कष्ट तो मुझ आत्मा की कमजोरी है अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कमजोरी अंदर है रिचुअल हम बाहर करते हैं यू नो हवन है हवन करना है योग अग्नि
0: तुम भगवान से नहीं डरते इसलिए ये हो रहा है आपके साथ यू नो जनरली ये कहा जाता भगवान से डरो हम
1: भगवान से डरो इसलिए कह देते हैं क्योंकि अच्छा कर्म करो यू नो जो हमने कहा भगवान कहते हैं कि हर जगह है देख रहा है लेकिन एक्चुअली जब हमें सच में उसका परिचय मिल जाता है कि वो हमारा यू नो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है जो फियर पर बेस्ड होता है यू नो दुनिया में भी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत डरा के चलते हैं पर बच्चे के अंदर कभी वो प्यार नहीं मतलब प्यार होता है लेकिन नो फियर है तो व्हाट आई फील इज फियर एंड लव कैन नेवर बी टुगेदर यू नो इफ देयर इज लव दे कैन नेवर बी फियर
0: एक्चुअली बच्चा फिर हमेशा अब चाहेगा कि मैं उनकी आंखों में कोशिश करूं हाँ, करता रहूं
1: तो फिर वो अपना नेचुरल नहीं होता वो डर में रहता है डर की वजह से वो झूठ भी बोल देता है उल्टा डर की वजह से ज्यादा गलत काम करता है छुपाने की कोशिश करता है अब उसी तरह परमात्मा के साथ एक है कि हम डर का रिलेशनशिप बनाकर रखें पर वो इसलिए क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं थे लेकिन वो पिता है गुस्सा तो वो कर ही नहीं सकता वो तो प्यार का सागर है ही लव्स मी ही इज द ओनली वन हु लव्स मी अनकंडीशनली यू नो अनकंडीशनल लव जो हम दुनिया में
0: कैन नेवर बी एंग्री वंडरफुल गुस्सा तो भगवान आपसे नाराज है मतलब
1: भगवान कभी नाराज नहीं हो सकता
0: see, लेकिन लुक एट इट आई थिंक आई हैव हर्ड इट सो मेनी टाइम्स यू नो लाइक
1: भगवान नाराज नहीं हो सकता सी दैट इज द ब्यूटी उसके अंदर कोई विकार नहीं है बिकॉज ही इज एवर प्योर तो गुस्सा कैसे आएगा उसको ये हमने जो बना दिए बहुत सारे परमात्मा को गुस्सा आया तो विनाश हो गया ये यू नो ये सारी चीजें परमात्मा को अगर गुस्सा आ गया
0: तो परमात्मा कैसे रहा बिकॉज ही इज टेलिंग अस नॉट टू बी एंग्री
1: ही इज द ओशन ऑफ पीस ही कैन नॉट हैव एंगर वो पिता है वो रहम दिल है वो कल्याणकारी है वो क्षमा का सागर है
0: वो लविंग है वो प्यार हाँ
1: सबसे पहली चीज तो प्यार है इतना प्यार देता है मतलब इवन द टर्म अनकंडीशनल लव विच आई यूज टू हियर पहले यू नो अनकंडीशनल लव एंड आई फील नो ह्यूमन बींग कैन गिव अनकंडीशनल लव इट्स नॉट पॉसिबल अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नो ह्यूमन बींग कैन डू इट आप कितना भी ट्राई कर लो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हो जाती है और जब वो नहीं मीट होती तो हर्ट होता है वो हर्ट नहीं होता वो बहुत प्यार देता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कहें फिर हम कुछ भी कर सकते हैं. यू नो, जहाँ पेरेंट बहुत प्यार देता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि और भी ज्यादा सही दिशा में चलने का दिल करता है, क्योंकि वो इतना प्यार देता है. तो आपको लगता है कि वो जो आपको शिक्षा दे रहा है आप उसकी हर शिक्षा को बस फॉलो करते रहो, क्योंकि आपको ये पता है कि वो हर चीज आपके फायदे के लिए है. सो ही इज अ वेरी वेरी वेरी लविंग
0: ना. जो हमने बात उस वक्त की थी, आंख बंद करके विश्वास करने वाली बात,
1: आंख बंद करके, क्योंकि ये पता है ना कौन बोल रहा है. कौन बोल रहा है तो निश्चय है. इसको ब्लाइंड फेथ नहीं कहेंगे. कई लोग कहते हैं ब्लाइंड फेथ है. नहीं, जब अगर हमें एक इंसान पर भी निश्चय हो जाए, सपोज मुझे निश्चय है कि आप हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही बोलोगे, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी आपको.
0: नहीं, पर हम अपने पेरेंट को क्वेश्चन कब करते हैं? आई डोंट नो एनी चाइल्ड क्वेश्चनिंग.
1: नहीं, बट अभी क्या होता है, कई बार चिल्ड्रन हैव दिस थिंग विद देयर पेरेंट्स कि नहीं ये पता नहीं मैं, इनका अपना इसमें रीजन है. इनका ये मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं. यू नो, इसमें मेरा फायदा नहीं है, मेरा फायदा डॉक्टर बनने में है, ये चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं. सो ये सब लिमिटेशंस अ पेरेंट एक्चुअली अच्छा ही सोचता है. इवन मनुष्य आत्मा कभी बच्चे के लिए गलत नहीं सोचते, लेकिन ईगो की वजह से अपनी थिंकिंग, यू नो, अपने लिमिटेड बैरियर्स है, लेकिन वो तो साकारी नहीं है ना. वो साकारी लिमिटेशंस में बाउंडेड नहीं है. वो हमारी बड़ी पिक्चर देख सकता है. ही इज नॉट बाउंडेड बाय टाइम एंड स्पेस.
0: एंड अगेन, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो लॉ ऑफ नेचर है या लॉ ऑफ कार्मिक डेथ,
1: वो हमें रिटर्न
0: तो करना ही है.
1: लेकिन परमात्मा हमें सही कर्म करना सिखा देता है ना. जैसे आप माँ हैं तो आप अपने बच्चे को सही कर्म सिखाएंगे. अगर वो आपके कहे अनुसार चलते गए तो उसका रिटर्न क्या होगा? सही का सही है. तो रॉन्ग होने की कोई मार्जिन नहीं है. तो सबसे पहली चीज तो हम कहेंगे परमात्मा से डरना नहीं. बिल्कुल नहीं डरना.
0: He's just too beautiful.
1: Don't have to get scared of him. He loves you and you need to love him back. And that's the relationship. Relationship with God is exchange of that purest love.
0: I love him, but then how do I tell him, you know? Like, how do I see, you know, like now you see, अभी तक I think हम जितने भी हम बातचीत करते आ रहे हैं, हमने खुद को भी पहचान लिया. और you know, like we were not even aware, but the moment the picture is clear, actually I can visualize, we can all visualize, you know, lot of confusions cleared. Even if we had taken it as an assumption.
1: Yes.
0: Shiv Baba, क्योंकि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हम नहीं, चलिए नहीं मानते. Assumption पे ही हमने माना कि शिव बाबा है, और उसके बाद हमने ये पूरा लॉजिक दे दे के हमारे सामने एक पिक्चर क्रिएट हो गई, विच इज आई थिंक सो ब्यूटिफुल, सो प्योर. नाउ हाउ डू आई गेट दैट लव?
1: वो जो हम याद की यात्रा शुरू करेंगे ना, विच वी विल सी कि वो कैसे उसको याद करना है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस रीगेन कर लीजिए कि वो मेरा पिता है, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे नाराज नहीं है, मुझे उसको खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है. जो बहुत सारे हमने विस्तार किया है ना कि भगवान को खुश करने के लिए यू नो
0: इसी तरह से करो, ये करो,
1: हाँ. वो बाह्य चीजों से हमारे वैसे भी नहीं खुश होगा. वो क्या चाहता है हमसे? वो हमसे ये रिचुअल्स नहीं चाहता है. वो चाहता है हम जागे, हम ये जो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं हम जागे और अपनी शक्ति को फिर से पहचाने. ये फिजिकल जो है ही फिजिकल नहीं है. जो फिजिकल है ही नहीं तो वो हमारी फिजिकल चीजों से क्या खुश होगा? क्या उसको मैं, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है उसमें से. सो दैट कैन नॉट प्लीज हिम एट ऑल. सो स्टॉप फियरिंग एंड स्टॉप डूइंग एनीथिंग इन द नेम ऑफ फियर ऑफ गॉड. यू नो, इवन इफ समबडी इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स दोज थिंग्स, यूज योर इंटेलेक्ट. सोच कर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं. बिकॉज इस समय जब हम भय में होते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे भय को एक्सप्लोइट करते हैं. यू नो, अभी अगर आपको, जैसे आप किसी नए शहर में चले जाओ और कोई आपको देखे कि आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, तो आपको एक्सप्लोइट करने के लिए 10 लोग मिल जाएंगे. इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बस अज्ञान में ठोकरे खाते हैं. तो उसको एक्सप्लोइट करने के लिए भी बहुत कुछ है. तो वो फिर यू नो देन इट बिकम्स लाइक मनी मेकिंग एंड सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन. तो उस एक्सप्लोइटेशन से हमें अपने आप को बचाना है और फेथ से चलना है. बिल्कुल.
0: तो ये कुछ बहुत सुंदर एक्चुअली, कि कुछ बातें इतनी क्लियर हैं कि भगवान से हम डर नहीं सकते. क्योंकि वो तो परमपिता है,
1: डरेंगे मतलब, तो उल्टा अच्छा रिलेशन नहीं बनेगा।
0: हाँ, क्योंकि हमने एक रिश्ता बनाना है, रिश्ता बनाना है क्या, रिश्ता बना हुआ है, उस रिश्ते को याद करना है एक्चुअली। इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। कितना सुंदर है हमारे पिता शिव बाबा, अगर हम मान भी लें, अज्यूम करते हैं कि हमने उन्हें माना, वो हमारे पिता हैं, परम पिता जिन्हें हम तलाश रहे थे। उनका परिचय इतना खूबसूरत है, कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली है, मैं अपने आप कह सकती हूँ। हो सकता है आपके पास अभी भी कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई, आपका स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल द्वारा या फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं।
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।
0: रास्ते खुल चुके हैं, शिव बाबा अपना निमंत्रण दे चुके हैं। पहला कदम हमें बढ़ाना होगा। कैसे करेंगे हम उन्हें याद, अगली कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: दिया।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station,
2: Radio Hanji. Stay tuned.

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन
0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
3: और जो हुकम मेरी सरकार
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
3: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां मित्रां दे चादरे ते पा दे मोरी। ससिका जी मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल ते तुसी सुन रहे हो हांजी रेडियो। हांजी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: वे सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।